अब छोड़ चले बाबुल नगरी। तब हाले अली पर क्या गुजरी, महल महल में बेगम रोवे, अब हम गुजरे दुनिया गुजरी, अब हम गुजरे दुनिया गुजरी।

0: अब छोड़ चले बाबुल नगरी। तब हाले अली पर क्या गुजरी, महल महल में बेगम रोवे, अब हम गुजरे दुनिया गुजरी, अब हम गुजरे दुनिया गुजरी।
1: Now little children, I want you to get around and hear I speak, because right now I'm on top of Blue Mountain Peak, enjoying the cool and the heat.